आजकल बड़े दुख की बात है कि अंतरे का विस्तार भूलते जा रहे हैं लोग। बहुत से लोग ऐसा कहना शुरू कर दिए कि अंतरे की जरूरत क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि उनको शायद मालूम नहीं है कि सिर्फ शर्ट पहन के निकल जाएं तो क्या हालत होगा। संचारी आभोग तो जा चुका है, अंतरे को भी भूलने पे लगे हुए हैं। लेकिन अंतरे की उपज वही गाएगा, वही बजा सकता है जिसको तालीम हो। अस्थाई सब लोग बरत सकते हैं, अंतरा बरतना बहुत मुश्किल है।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में दिलराज कौर और मोहम्मद रफी की आवाज में इंद्रजीत सिंह का गीत।
1: बहुत साचे।

विक्रम संवत 2082, शालिवाहन शके 1948। आज बुधवार, श्रावण कृष्ण त्रयोदशी, अर्थात 9 सप्टेंबर 2026।

0: आपण ऐकत आहात इंटरनेट रेडिओ स्टेशन भक्तीसुधा, आत्मोन्नतीचा आध्यात्मिक प्रवास।
1: श्रोताओं प्रस्तुत कर रहे हैं हिंदी भक्ति गीतों का कार्यक्रम भक्ति सुमन।
0: श्रोताओं अभी सुनते हैं पारंपरिक भक्ति रचना, संगीत है श्रीनिवास खड़े जी का और स्वर है पंडित भीमसेन जोशी जी का।

अब सुनते हैं पंडित हृदयनाथ मंगेशकर जी के संगीत निर्देशन में संत मीराबाई की भक्ति रचना। स्वर है लता मंगेशकर जी का।

0: श्रोताओं सुनते हैं सोनिक ओमी के संगीत निर्देशन में दिलराज कौर और मोहम्मद रफी की आवाज में इंद्रजीत सिंह का गीत।
1: बहुत साचे।